नया वर्ष को अवसर में सेंसे का होम अप्लायंसर को खरीद में आकर्षक उपहार तथा कैश बैक। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल, सेमी ऑटोमेटिक में 1 केजी एरियल, एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन साथ इंस्टेंट कैश बैक बनी र बम्पर में हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल। नागरिकता मात्र भए पुग्छ, सहज EMI मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।

तथा शेयर शॉट गिफ्ट्स वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैजिक डिशवाशर में वॉशिंग टैबलेट्स एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन र फ्री स्टैंडिंग ओवन में प्रेशर कुकर नागरिकता मात्र भए पुग्छ सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ

0: 10 66 356 56।
1: बारिश्ता बेकरी कुक सुशी बारटेंडर हाउसकीपिंग रिसेप्शन पिज्जा मेकर कुक हेल्पर वेटर वेट्रेस लगायत का ताली भरू धमाधम संचालन भइरहेको छ। साथै जॉब ग्यारेन्टी सहित 6 महिने कुक तालिम संचालनमा रहेको छ। गरी खाने शिक्षा हामी सबैको इच्छा।

एसर को खरीद में कैशबैक तथा श्योर शॉट गिफ्ट वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैटिक एसी में फ्री इंस्टॉलेशन र नागरिकता मात्र भए पुग्छ सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ ग्लोबल नंबर 1 टीसीएल इंस्पायर ग्रेटनेस

0: टाइम चेक।
1: इस समय सूचक का साथमा
2: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 5855 7070 161 र 98 5550 7053।
3: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप, डायग्नोसिस, ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जली हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 स्थित वन। फोन 0556 4940 4395 80 र 98 5550 2640।
4: It's 8 o'clock. अहिले 8 बजेको छ।

मझेरे को धारने ठेको दही होला के मै छ मझेरे को धारने ठेको दही होला के मै छ गीतांगे के छोरो मत।